0: गुइसरी
1: तिम्रो गाला को तिल जहाँ छ मेरो दिल
0: Well, everyone, final rehearsal. 1, 2, 3, start.

0: अलिसा, तिमीलाई थाहा छ नि है, म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर।
1: यो कुरा चाहिँ गोप्य राख है।